हाँ बिलो अतिशा जा मिटा मम्यादी देखे के जिया दीगवा माचे चे दीबनी अच्छा उसे तो अच्छे ना तो बिया मिशा बिया अच्छे